रेडियो अमल जज्बा है मोहब्बतें समेटने का, मालूमात की एक नई दुनिया बनाने का, ये जज्बा है आपकी आवाज बनने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने का, एक अज़्म अपनों को पास लाने का, बिछड़ों को फिर से मिलाने का, एक जज्बा आपको खुश रखने का, आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें लाने का। रेडियो अमन 88.4 खुश रहने का जज्बा।

0: You are listening to Radio Ahmad Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: आपका अपना रेडियो रेडियो में 88.4 नेटवर्क
3: द करक अनूर शो खाखल को द पारा द खुशाले खबर उस्तासो पा खपल खार करक की द डीरो गण बीमारो लका शुगर अरकुन निसा फालिज जोड़न बीमारी गुर्दों की कहानी त्रिख की कहानी बेऔलादी बवासीर मैदी जख्म ब्लड प्रेशर लुगन लगीदल द वजूद सुस्ती प्रास्टेट दमला दर्द द जुड़ी बीमारी और द जनानो नारिनो नूर पट औखकार बीमारों पशमूल द हर मर्ज इलाज पा तसले सरा दियो तकड़ा काबिल और तजुर्बाकार डॉक्टर सैयद जाकिर शाह आचार्य से अपना खवलिशे सूखची डी चिमिस बी चिमिस आर चिम्पी और नूर सनदुना तरला से कौन की द पेखवर मशहूर होम्यो फिजिशियन दे द नूर मालूम द पारा पा दी नंबर राबेता उकड़े 0331-52-65-340 पता याद साथे पिशावर हेल्थ मेडिकल सेंटर मलिक सिंजित मखामख सिविक प्लाजा जेल चौक खरग

0: Τώρα είμαστε με ζητάρ το ούγε γέζει από τα σαπάρ σε δε τόσα έχω χαστηθεί.
1: Για να τίσε τα αρχανά από σαπάρ και έχουμε ίσμα βάσινγκ πόρτερ έχω χαστηθεί.
0: Ίσμα βάσινγκ πόρτερ. Μάρα είμαι ζει μόχο κορτά national ο multinational καπνέιβολ βάσινγκ πόρτερ βοήβη. Κούρσε αξάρ γιλάρ τα κίζε τα σαραγγε σαρα προβρή.
1: Βέλκολ τα αρχανά τα γιλε βε χάρβαστε μούτα χάν κούρσε κραλέ. Χωτσε καλά να με κούρτα ίσμα βάσινγκ πόρτερ βοήβη σε ρικρέ δι. Ο στούλ κούρβαλα να χωσούλ δι.
0: अच्छा मिस जी ब्याह कुर्ता जहर से रबरो ऐश्मा वॉशिंग पाउडर से सदा से खास खसूसियात थी
1: तारे खाना ऐश्मा वॉशिंग पाउडर खास खसूसियात दागा दी जी कपड़े सा पुशले को जोर ना जोर दाग पर गारंटी सारा खत्म करी जाकर सजूद की वो दिनोर सरफे पर नस्बात ऐश्मा वॉशिंग पाउडर काम इस्तेमाल जी और बला खबर अदा कपड़े सा पई पवात लोसीना न खर पवी
0: शाह मिस जी चे दम रक्षला रिजल्ट ये दाय दार तो हुई जी दाओ मोता चेरता मिला भी जी
1: तारे खाना दाओ तो दफा बने गलसे अंदरून लाकी गेट जानसे पे गाले पर शेयर मार्केट से देश में मेन डिस्ट्रीब्यूटर हाफिज जहीर साहब सर उधर से मिला भी जी

0: या तो बस लोगो
1: तकलीफ कम शो
0: सकून रहता मिलाओ शो
1: सही था ठीक था ओके डेरा मनाना अल्लाह दे खुशहाल का सबा जमा खोगे खुरमा सरमल गिरी वा और राजी चिलक स्टार्स को मैसेजेस बांधे होम नजर वाचो।

0: चाहतों के रंग अमन के संग अमन रेडियो 88.4 नेटवर्क।
1: द करक अनूर शो खो अखल को द पारा द खुशाले खबर उस्तासो पा खपल खार करक के द डीरो गण बीमारो लका शुगर अरकुन निसा फालिज जोड़न बीमारी गुर्दो की कहानी त्रिख की कहानी बेओलादी बावसीर मेदी जख्म ब्लड प्रेशर लुगन लगे दल द वजूद सुस्ती प्रास्टेट दमला दर्द द जुड़ी बीमारी और द जनानो नारिनो नूर पट औकार बीमारों पशमूल द हर मर्ज इलाज पा तसले सरा दियो तकड़ा काबिल और तजुर्बाकार डॉक्टर सैयद जाकिर शाह बाचा से अपना खवलिश है सोखची डी चिमिस बी चिमिस आर चिम्पी और नूर सनदुना तरला सकून की द पेखवर मशहूर होम्यो फिजिशियन दे द नूर मालूम द पारा पा दे नंबर राबे उकड़े 0331-52-65-340 पता याद साथे पिशावर हेल्थ मेडिकल सेंटर मलिक सिंजीत मखामख सिविक प्लाजा जेल चौक खरड़।

0: यो सोका सिधे अब नोर कस है या अब आसे जिजर गले अब शामिल हुआ लेट्स सी नेक्स्ट कॉल है अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम सोका से खबर की किम से ना
1: इकबाल खटक खबर कौन दे तपी कर देना
0: ओके जी इकबाल खटक तपी कर देना जी वेलकम टू द शो प्रोग्राम की स्टडी मशीन जी हर कल दे दो भैया
1: مہربانی.

डेडिकेट फॉर वी एपिसोड पे जाने को यो जहान मनन वही चेजड़ो शशी नजर वशी चेजड़ो शशी नजर वशी द आर जे के पखपला जान नजर कवि ना वाय वाय नजर वेलो ना वो नजर चो गुड़े और जाने टेंशन फेकर मा कवैसा यो जहान मना थैंक यू नेक्स्ट मीक यू टू शिखान वी आई पी स्वीट भाई जाने हर चमकती चीज सोना नहीं होती इसलिए मैं हर चमकती चीज के पीछे नहीं भागना भी नहीं चाहिए अक्सर चमकती हुई चीजें धोखा

0: हो गए जी टाइम रोड है कहाँ पहुँचा
1: थोड़ी दुन की में परेशान है रस भी से चल रहा है इस सचाल में नदाई था भी प्रोग्राम मुकवाशान और इस सचाल न तो बिल्कुल दसों में ठुन पल तरफ तेरे सुशा थोड़ी दुन की खफा ने विशा माँ खफा कैसे ठीक ठाक जा
0: वो सही था उस पर ठीक भी कहना

OK, Gene, next. अच्छा अस्सलामुअलैकुम अस्सलामुअलैकुम राज भाई सरेंगे ये चापड़ा छोटी को ले लेते डले बे वही पजड़ो कमजोर हाल को वाव रहे पजड़े कमजोर हाल को वाव रहे मीना वो नकड़े जिंदगी तबाह कभी ना छोटे महवेश्ता छोटे है ना इधर छोटे को ले लेता स्पेशल सलाम मैं छोटी अक्सर फ्रॉम घर है अक्सर थैंक यू सो वेरी वेरी मच खबर है

अरे माय स्वीट चाचू, हा हा हा, टेम काम है, टेम काम है, मेरी सॉन्ग प्ले प्ले करो। ओके नेक्स्ट कितना प्ले करो, सही रहा, भूल गई है, भूल नहीं गया हूँ, टाइम कम है, टाइम ढेर ढेर कम है। अख्तर प्रोग्राम के प्ले करता है, ओके स्वीट चाचू, हाँ हाँ टाइम काम है मेरी, अच्छा ओके भूल गया, ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच। मेक यू टू शिखान स्वीट भाई जाने वफा दरसरा ओके वही चास मसेप को वेलकम माय स्वीट। अच्छा माय सलाम टू छोटी मावेश गोलशन खटक लाडली जीमल छोटी अक्स सारा बनू, अच्छा सारा बनू अलता दिल रुबा खटक ता इकरा वजीर ता वफा वफादा, अच्छा वफादार वफादार ता आसमा सेप ता सॉन्ग प्ले गो। ओके जी मेरे प्यारी वीआईपी स्वीट भाई जानी, ओके गुड लक, थैंक यू सो वेरी मच। टाइम रो सर बेखी सर तो रसीद लाइद सरंगी प्लेक इंशाल्लाह का जिंदगी पकड़ा नेक्स्ट के सही सो फजोरे दुन को चा मैसेज रो ना पोते होचे नवी का पे पोते वी का ना दे दे सॉरी टाइम रो सर सर तो रसीद ल टाइम देर काम में का जिंदगी पकड़ा नेक्स्ट प्रोग्राम की तो सर यूजली भी मुलाकात की जी पर जुनू बटे खास होता है चारों सचेत अचेत के प्रोग्राम हो रहे दो शमूलियात ओकड़ो यार सर खामोश खामोश है क्यों रहे दो खामोश लिसनर डेरा डेरा मेहरबानी शुक्रिया जी थैंक यू सो वेरी मच इट्स स्पेशल मेहरबानी शुक्रिया खामोश हो रहे दन को चारों सरा का लीला शिरकत चारों सर से मैं सोकड़ो यो जहान मन ना टाइम सर तरह से दल करता है मैं इज्जत गुश्तल करता है सुता दुआ कवल करता है खुशहाल हो सहबाद हो से रोजान भाई जान दुआ गानों की यो सुता है ठीक ठाक हम जग जोड़ी हम फिट फाटी खुश खुशहाल खुश तबियत है हम खुश मिजाज हम शुक्र गुजार हम छे टोल रहे तो खुशहाल हो से रोबो के मत इजाजत बाय बाय टाटा पाकिस्तान जिंदाबाद रेडियो मन कर रखवाइंदाबाद अल्लाह हाफिज लो अल्लाह पमा।

0: अच्छा हुजैफा कंपनी शिफा ब्यूटी क्रीम से हुजैफा कंपनी शिफा फेस वॉश इस्तेमाल दावेटा मंसी फेस वॉश बेहतरीन फेस वॉश डिरजुत लाजवाब फेस वॉश टिकला तुसे द क्रीम ना बाद इस्तेमाल के ओ मख पे विंजे तुसे ताओ द खपल मख जवाता पाता वाला आजा चेरता दिया और दिन के लिए दल नशे हाँ चेरता ली दी का गर्मी वर कड़ी दी हाँ ये उस पर हमें लिदल दुल्ले मंडे वाले दिल्ले मंडे वाले चेरे दागा आगा दासे हाँ कुछ जहू स्वर तारोक लक्षेन उस तलाव देरो ना वरक्ष वाले आता नष्टा चेसा चार लिया रिये पयुदेश्वा कना दे मुन्ना दासेश वाल चे अब ये ही चेरा शायद खान था वो जूम था नुस्वी ना खुदास को ना कीजिए ये तुसे रुसरा वेस्ता है अनु ब्याह खान द मजा कोले पाई दुखी है आ का तुसे चेरे लग गया है पा आ दा खबर आ
1: नोर पटोल सोन लपे जंदो इनका देख रमा
0: हुजैफा कंपनी शिफा तेल इस्तेमाल के कचरे दिसार विष्टोन वश दवल यवल गणवल मजबूत अवल कुशल यावल या चमकदार बाल गुड़े या

0: कल की यादें, आज के लम्हे और आने वाले कल की उम्मीद, सबको जोड़ती एक आवाज रेडियो अमन 88.4 सड़क हर वक्त आपके साथ।
1: द आवाज दे द अमन। द आवाज दे द पाकिस्तान। द आवाज दे द रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।

आप सुन रहे हैं रेडियो अमन पर, अमन मोहब्बत और आगाही की आवाज़। हमारी नशरियात उन्हें मजबूत इहाम पिलाए और माशरे को जोड़ने में

सो खुश हो रिदन को रेडियो मन खरे ढोल गोल गोल हेड बुल बुल लिसनर यो झाले ब्या प्रोग्राम दस्तूर महफिल के ढोल और रिदन गोदा डे डे वेलकम हर कले इस तड़ी मा से जी बिल्कुल कमिश गोर है दस्तूर महफिलनु के बोयु जी

0: भवे जैसे हाँ मैनेजर प्लीज
1: ओके जी मैसेज बिल्कुल सही छी मैसेज छी दिया को तो बहुत टाइम मेरे को है ना जी बिल्कुल मैसेज टाइम मेरे के भी हो सो ओपन लेटर जी बिल्कुल नन जी कम प्रोग्राम से कम टपी दी अब हम वेली छी सही तरह नो मा अच्छा तरह नो बिल्कुल तरह नो बिल्कुल वेली छी सही ओके सही दा नो अगेन बाद भी बिल्कुल मैसेज छी कम दे बिल्कुल से मिले भी

0: नाम पसड़क सलकस महोकम पजड़क सलकस महोकम
1: पजड़क सलकस महोकम पजड़क सलकस महोकम।

0: सनमा अब मेरी तन्हाई आसा ओ सना
1: जी
0: ओ सनमा अब मेरी तन्हाई आसा न सुबह शाम बेकरारी न उसके बाद रात बारी
1: न सुबह शाम बेकरारी न इसके बाद रात

0: खाजी सही बिल्कुल कम सॉन्ग चुकने वर्षा लगा सॉन्ग बेलाऊं नज़र दे सही सही नो बिल्कुल दस के बीच है प्रोग्राम से मैसेजेस हंस में लेवी
1: हाँ मत दस अंदर है प्ले का बिया मैसेजेस है मैं बैकग्राउंड के प्ले का सही ना
0: जी
1: तो रुझामो की तरह नजर आने
0: अच्छा जी
1: चर्त में जोड़ दस अंदर सर आने
0: सही ठीक था
1: मत दस प्ले का
0: सही बिल्कुल दस अंदर में दस प्ले कर ला नो बिल्कुल
1: स्पेशल तरफ तो सुसाइड है बैकग्राउंड की जी
0: बिल्कुल दस स्पेशल गोल गोल एंड बुलबुल रास्के की बना बांधे द सॉन्ग

0: हाँ जी सही बिल्कुल राज भाई हैं और भी
1: बैकग्राउंड
0: दिन सबसे मैसेजेस हाँ डिज यू तदा के रोगली दी टाइम बिल्कुल की वेर की मैसेजेस हाँ बिल्कुल बिहार फकीर जी अच्छा जी बिल्कुल मैसेज करने दे बचे फर्स्ट मैसेज कर दिया अस्सलाम वालेकुम एंड अस्सलाम वालेकुम गुल गुल एंड बुल बुल वी आई पी स्वीट बाई जान एंड द सुपर डुपर तारिक भाई मेक योर शोर शिहान वेलकम टू द शो वेलकम टू द स्टोरो स्टोरी द महफिल शो माशाल्लाह शो तो बहुत अच्छा जा रहा है वेल डन हमेशा की तरह से डेरा बना थैंक यू सो मच मैसेज कवाले डेरा डेरा बनाना लोहिया खास अच्छे और या रुशियान ब्याह मैसेज करे दे डेडिकेटेड फॉर माई फेवरेट एंड बेस्ट वी आई पी स्वीट बाई जानी खजी वही कहना चाहिए खैर दिखा पो रंग तोर पर आर जे के डेरा बेहदा पो मिश ग्रोंदा अच्छा जी डेरा
1: मन शुक्रिया
0: जी यो जहान मन्ना थैंक यू सो मच मैसेज को वाले डेरा डेरा मनना रुशि खान मैसेज करे दे ब्याह हम मैसेज करे दे कहना चाहिए रुशि खान डेडिकेट फॉर माय फेवरेट एंड बेस्ट वी आई पी स्वीट बजानी को मैं चाहिए स्माइल स्टाइल हर चरा खान की द आर जे के स्माइल नष्ट मिसल होना खजी डेरा मनना थैंक यू सो मच यू जहान मनना मैसेज के वाले लो या खजा डेरा मनना जी बिया रुशि खान मैसेज कर डिजिटेड फॉर तारिक भाई मैनेजर को नोर पर दुनिया डेर दी द रेडी ओमन करेक्ट मैनेजर पो तुरशपा के पड़क कवीना
1: भले जी भले
0: जी डेरा मनना यो जहान मनना माशाल्लाह जुड़ी गई है ना खजी यही कहना चाहिए अच्छा बिचे राज भाई तो एसएमएस शामिल के तारे खोपो जंपीना ए आई मैसेज ना दादे गोरा शामिल में देख मारी अरमान मैसेज करी सलाम छो रोशी खान
1: मैनेजर से एकदम खुशा खुशा शामिल है बीचे
0: जी बिल्कुल दादे गोरा मैसेज में शामिल कर डेरा मरना मैसेज के वाले यो जहान में ना अच्छा जी देवरत बने निजमान चुकम शुभ के ना कुछ उनका खास सो वो जब बने मतलब फिलहाल स्किप चलेगा ना
1: अल
0: तक दख पल चुकम शुद्ध के ना मतलब दस ना ग्यारह बारह ठीक शुआ
1: जी
0: कमर्शियल शोधा अल तक कमर्शियल शोधा के ना दो बजे बना फिलहाल मतलब स्किप चुला नौ डेरा मरना मारिय मान च मैसेज देवक रुशिहान भी मैसेज करे दे वे स्वीट बजानी एंड तारिक भाई वाह जी ना ना ना नाइस सॉन्ग बिल्कुल शो के साथ परफेक्ट है थैंक यू सो मच जी यो जहान बनाना प्रोग्राम से मैसेज होगा दलदत भाई अरान वो लका राज तारिक दुमरा सरग्रान वो लका राज तारिक यू बोल तई रुना डालाई कड़ी वो यू बोल ना कुर्बान वो लका रास तारीख माशाल्लाह द नजरा लगे द नजरा सखाइस लरे गोल गंदेज बनान वो लका रास तारीख मैं सुपर डुपर मलिका डेरा मनना
1: सुपर डुपर मलिका थैंक यू सो वेरी मच
0: जी मैसेज के वाली जहान मनना लोया खास शे डेरा डेरा मनना जब प्रोग्राम शुरू दस एक्चुअली शांति पोस्टर वाला चला
1: दो हाँ काफी रदीफ अंदाज से ना
0: जी डेर मनना चे प्रोग्राम से मैसेज को यो जहान मनना जी देने लवा नेक्स्ट च मैसेज करे खजे कल कल रात भाई जी मैसेज
1: ट्रैपिंग कही कहना ट्रैपिंग कही छे
0: जी बिल्कुल दास दी खजे सही ही बिल्कुल अच्छा जी नेक्स्ट मैसेज कर दी अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू द स्टोर महफिल शो हाउ आर यू वाओ स्वीट राज मामू एंड क्यूट तारिक वजीर पखीर रोगलेम दुआड़ा मेग्रेड मलिका
1: जी वालेकुम सलाम थैंक यू सो वेरी मच वी आर फाइन
0: जी डेल मनना
1: सो फाइन थैंक यू सो वेरी
0: जी थैंक यू सो मच मैसेज के वाले यो जहान में ना इट्स मी लाली जीमल फ्रॉम करेक सलाम तारिक सर एंड राज राजो वेलकम टू द शो
1: जी थैंक यू सो वेरी
0: डेरा मनना लोया खजा मैसेज को वाले ब्याह हम लाली जी मैसेज फ्रॉम करे असदफ वाता नूर एनी ता हाफ सा चेक ता रोशी खान ता और चल गुलगुल से अस्सलाम वालेकुम थैंक यू सो मच विच भाई सर दिल रुबाह तक कजन यो मेहरुबाह तक भाई दिल रुबा ओई होई होई दस रंग मैसेज कर दे सही दास से खबर खबर नहीं डेरा मनना

0: आप दोनों से नाराज हो। अरे राज लला, आपको तो बड़ा भाई समझा है, तो आप अपनी छोटी सिस्टर का हाल नहीं पूछेंगे कि आपकी बहन तो आजकल बड़ी अजियत में है। अच्छा जी, बिल्कुल चुल बड़े कहने की भी, और तारिक सर भी एज ए टीचर अपने स्टूडेंट का हाल हाल तक नहीं पूछते। रिक्वेस्ट है कि मेरी ये दुआ करे, सुनिहान मैसेज करे दे।
1: ओ अल्लाह खैर वो कि अल्लाह पाक तो से टोल अगर तकलीफ ना छे दे अगर पखपल गैबाना कुदरत सर छे दल रे के सही
0: जी बिल्कुल
1: गाने को तक
0: डेरा मनना
1: हौसला छे किम दा गा मा वर जावे ठीक छला दा तकलीफ ना मुश्किलात रुसी जिंदगी के छ दागे हल तरफ तो सोच कवे
0: जी
1: परेशान के जे मा
0: बिल्कुल अजीज सही खबर दा यो रच शाश
2: कुल दे पगा जा पैसे
1: خوشا
0: سہی

0: मैनेजर से एवा खबर है वो रुआ निर्देश है
1: अच्छा
0: निर्देश है
1: बिल्कुल नजदीक
0: वैसे इस तरह की देखेरा था निर्देका
1: निर्देश
0: पल निमगड़ी हारमोनी ना
1: जी।